आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।

नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गीजी कनिक के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2024 की मई महीने की 30 तारीख है और दिन है शनिवार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण FM के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दीतांजन तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज की तरह आज भी इस सभा में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए दोस्तों, इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही शुभ हो, आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा से।

श्रोता दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा कालो बोली में समाचार।

6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर प्रसारित होगा आपातानी बोली में समाचार। 7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम

कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप, 10 बजे आप एक बार फिर से सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड आप सुन पाएंगे 10:10 पर। 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेज सफर में पेश होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के 3रे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस

से स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यही पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: Adam district lo alab rilug ganam gama em chin ukadar kam rigaka ok law and order ILP enforcement public service delivery transport safety ok revenue generation sok abaga dem chin kabasogo parju sinyatu ok agera nam ruam aldobe ok somoy lo rilendobe riga toka amla naru concern department am dcb menga blektu siang apar multi purpose project sok abam ni ga de mentom ritom nam lagab doni lo ni lagab public awareness ok community engagement program go pangkang do lulo rigaka ok sogo dolu ni ga de aik me nam monam menken riken do be interaction session go chin rigatu ke sriga lo menken agume ege
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो बोली में समाचार। आपको बता दो, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

दोस्तों, सुबह सवेरे हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है आपकी तंदुरुस्ती को, जिसमें हम रोजाना लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी बातें, योग व्यायाम की जानकारी और आपके पसंदीदा गीत। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं कुछ असरदार हेल्थ टिप्स के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है, सुबह नींबू पानी से करें दिन की शुरुआत। एक ग्लास गुनगुना पानी में आधा नींबू मिलाकर पीना आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है। दोस्तों, दूसरी टिप है, खाली पेट कोई फल जरूर खाएं। सुबह फल खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और पाचन क्रिया सुधरती है। कोशिश करें कि मौसमी फल जैसे सेब, केला या पपीता लें। दोस्तों, अगला टिप है, सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक या हल्का व्यायाम आपके शरीर को एक्टिव कर देता है और मन को भी सुकून देता है, इसलिए थोड़ी सी हलचल जरूरी है।

दोस्तों, दिन की शुरुआत से ही पानी पीने की आदत बनाइए। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी जरूर पिए, इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। तो श्रोताओ, आगे हम आपको और भी हेल्थ टिप्स देंगे, लेकिन इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं आज का पहला खूबसूरत गीत, ताकि आपकी सुबह बने और भी खुशनुमा। आइए दोस्तों, सुनते हैं AR रहमान की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

थोड़ी धूप जरूर ले। सुबह की हल्की धूप से शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और मूड अच्छा बनाए रखता है। खुली हवा में गहरी सांस ले। अगर आप हर सुबह 5 मिनट खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लेते हैं, तो वो स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। दोस्तों, 4 से 5 बीघे बादाम या एक अखरोट जरूर लें। ये ड्राई फ्रूट दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ छोटी लेकिन असरदार बातें, जिन्हें अपनाकर आप हर दिन को बना सकते हैं हेल्दी और हैप्पी। याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़ी सेहत बनाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ और नगमे।

तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आपातानी बोली में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपातानी बोली में समाचार। आपातानी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। लीजिए दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी और कुछ नगमे।

चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट से, यानी आज का इतिहास से। सन 1606 में आज के दिन सिखों के पांचवा गुरु गुरु अर्जन देव का शहीद दिवस याद किया जाता है। सन 1858 में आज के दिन रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर हमला किया था। सन 1919 में आज के दिन महान कवि और साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी।

सन 1978 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर डायरेक्टर गोपीनाथ बरदोलोई, जिनको गोपी दादा के नाम से भी जाना जाता था, उनका निधन हुआ था। सन 1981 में आज ही के दिन बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की उनके आठ सहयोगियों के साथ हत्या कर दी गई थी।

1987 में आज ही के दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 25वां स्टेट बना था। सन 2003 में आज ही के दिन नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद ने अपने पद

से इस्तीफा दिया था। सन 2004 में आज के दिन सऊदी अरेबिया में हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हुआ, लेकिन दो भारतीयों समेत 22 लोगों की जान चली गई थी।

सन 2007 में आज के दिन इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे पर 107 पीस कीपर्स को सम्मानित किया गया था। सन 2008 में सुजलो एनर्जी ने विशाखापट्टनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 10 स्टील यूनिट्स एक्वायर किए थे। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही, और अब आइए रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से, गवर्नमेंट टू फॉर्म एचपीसीज फॉर एपीएसटी रीवेरिफिकेशन स्ट्रेंथनिंग आईएलपी। राज्य सरकार ने एपीएसटी प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन, गैर एपीएसटी संतान मुद्दे, आईएलपी ढांचे को मजबूत करने और आईएलपी दिशा निर्देशों 2026 तथा अवैध घुसपैठ की समीक्षा के उपायों की जांच और सिफारिश करने के लिए 4 हाई पावर कमिटीज एचपीसी के गठन पर सहमति व्यक्त की है। ये निर्णय मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन समिट, अरुणाचल स्वदेशी जनजाति मंच, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस सीबीओस और अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को यहां सिविल सेक्रेटरियट में बुलाई गई एक घंटे की बैठक के बाद लिया गया। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, 4 फ्रॉम अरुणाचल डाई इन रोड एक्सीडेंट इन आसाम। एक दुखद सड़क दुर्घटना में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लीगे बासर, उनकी पत्नी कुंगा दोयमा बासर, बेटे गामेर बासर और उनके बेटे के दोस्त कर्मा शेरप की शुक्रवार को आसाम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वे गुवाहाटी से लौट रहे थे और खेतरी क्षेत्र में NH-27 पर करे सीमेंट से भरे एक भारी ट्रक से टकरा गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। शवों को गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश लाया गया है। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, ऑर्गेनाइजेशन अर्जेस सीएम टू स्क्रैप 80-20 रिक्वायरमेंट रेशियो। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट AFTF ने मुख्यमंत्री से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB में लागू 80-20 रिक्वायरमेंट रेशियो को पूरी तरह से समाप्त करने का आग्रह किया है। इस व्यवस्था को पुरानी और राज्य के स्वदेशी लोगों के हितों के लिए हानिकारक बताते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि शेड्यूल ट्राइब एसटी सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट PRC और अरुणाचल की ट्राइबल भाषाओं या बोलियों का ज्ञान APPSC और APSSB द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अनिवार्य किया जाए, ताकि आउटसाइडर्स को रोका जा सके। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हेल्थ एट DNGC। दरनाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज DNGC के NSS सेल ने कॉलेज के IQAC सेल के सहयोग से शुक्रवार को यहां कॉलेज में करियर काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में NSS प्रोग्राम ऑफिसर बॉटम मोयोंग, डॉक्टर कीपा रोनी और डॉक्टर तारा अची के साथ DNGC के प्रिंसिपल डॉक्टर MQ खान ने रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया। इस प्रोग्राम में DNGC के सभी 14 डिपार्टमेंट्स और 125 सीनियर्स NSS वॉलेंटियर्स ने भाग लिया, जिन्हें उनकी उत्कृष्ट प्रतिबद्धता, समर्पण और निरंतर सेवाओं के लिए NSS सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की

0: तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने शुरू मुल तागिन प्रोग्राम को गिला यूनियन अबेन थम गेन सी राजीव राय। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू स्टेट लो एपीएसटी री वेरिफिकेशन लखंग अफ मेंबर को ने हाई पावर कमिटीज गो मलिन लाडगन खुबला में पाद को सो गो कमिटी सी नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग इश्यू दोंग रुक लोका अल रोंग ब चेक में से मरब ते खुनेला में पाद को ओके सी आई एल फी फ्रेमवर्क ग अरालोक आई एल फी गाइडलाइंस 2026 का मलिन गुन ओक इलीगल ब आस आपित ना कालेन याते खुनेला मिफाद को सौ कमिटी सोम मयो अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइब्स फोरम सी बी ओस आपसु एस टी बचाओ आंदोलन कमिटीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स ओक लीगल एक्सपर्ट्स ददंगा दोपाम गो तेव का पक मैं सुगई खुला मलिन पकुनेला फालिन दुखो ओके सौ दोपाम सु स्टेट लो कैबिनेट

आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सदाबहार का।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदाबहार कार्यक्रम और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त की चिकनी। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज पापुम्पारे ईटानगर के मौसम का ताजा हाल। दोस्तों, इस समय तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है और मौसम आंशिक रूप से धूप वाला बना हुआ है। हालांकि तापमान 29 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। हवा की रफ्तार लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और नमी का स्तर 76% दर्ज किया गया है। आज दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह के समय मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 10 बजे से 11 बजे के बीच हल्की बारिश की संभावना बन रही है, इसलिए घर से निकलते समय छाता साथ रखना ना भूलें। वहीं आने वाले कुछ दिनों में गरज चमक के साथ बारिश होने की असर है, इसलिए मौसम के बदलते मिजाज का ध्यान रखें। फिलहाल दोस्तों, मौसम की जानकारी में बस इतना ही। अब आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। सुनिए और इन गीतों का

तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी शिलांग केंद्र से 9:30 न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और इस गीत का आनंद उठाइए।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के?
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलू

0: पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3रा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार में

0: ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong. Clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru.

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप भारी बारिश से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात एवं मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आपको बता दूं, ये आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर का।
1: हेलो ईटानगर।

डियर लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का हेलो ईटानगर कार्यक्रम में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मिलेंगे आपको संगीत

का रंग और यूजफुल जानकारी भी। तो दोस्तों, ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर में अब एक छोटी सी हेल्थ टिप जो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन जो आजकल हर तीसरे व्यक्ति को हो रहा है, और इसका एक बड़ा रीजन है ज्यादा नमक खाना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका बीपी हाई है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हाई बीपी होता क्यों है। तो आपको बता दूं, सबसे कॉमन रीजन है ज्यादा नमक का इस्तेमाल। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। आजकल की फास्ट लाइफ में स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। और दोस्तों, तीसरा रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऑयली फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग भी इसके बड़े कारण है। तो दोस्तों, हाई बीपी के नुकसान छोटे नहीं होते दोस्तों, ये दिल की बीमारी, किडनी डैमेज और स्ट्रोक तक का रिस्क बढ़ा देता है, और जब तक कंट्रोल ना किया जाए ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकता है।

लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, गुड न्यूज ये है कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, जंक फूड, पिकल्स, पापड़, चिप्स और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए। अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स लीजिए। दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज को अपना हैबिट बनाइए। और दोस्तों, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहिए, और सबसे जरूरी बात, अपना बीपी टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। याद रखिए दोस्तों, थोड़ा कम नमक, थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज और ज्यादा पॉजिटिव सोच, यही है सेहतमंद जिंदगी का फॉर्मूला। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिजी कनिक, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी कार्यक्रम में हेलो ईटानगर पर। चलिए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं कुछ प्यार भरे नगमों को।

कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नवीनतम परिवर्तन करना है और अपात्र नामों को हटाकर सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल आंध्र प्रदेश के वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की विभिन्न पहलों और विकास पहलुओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में वस्त्र मंत्रालय, आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड और संबद्ध विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री सिंह ने वस्त्र और रेशम उत्पादन क्षेत्रों की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार में गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोवा संस्कृति और विरासत का भव्य संगम है, जो दुनिया को भारतीय आतिथ्य सत्कार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
3: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका फेवरेट एंटरटेनमेंट शो फिल्मी गपशप। दोस्तों तैयार हो जाइए बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की ताजा खबरों और मजेदार गपशप के लिए। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं क्रिकेट और बॉलीवुड के खास कनेक्शन से।

बच्चे की तारीफ अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी की है। सिर्फ 15 साल की उम्र में बेवफ जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में कमाल कर रहे हैं, उसने हर किसी को प्रभावित किया है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर बेवफ की तारीफ करते हुए लिखा कि जिस उम्र में बेवफ क्रिकेट में इतना नाम कमा रहे हैं, उस उम्र में वो खुद बनते और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पाते थे। बिग बी ने ये भी कहा कि उसका अंदाज उसे काफी पसंद आ रहा है और लोग भी बेवफ की टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, जब किसी युवा प्रतिभा को इतने बड़े आइकॉन से सराहना मिलती है तो उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। हम भी बेवफ को उनके

दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं सिनेमा की दुनिया की अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों फिल्म मेकर रीमा कत्ती एक बार फिर चर्चा में है। रीमा ने हाल ही में नेपाली लैंग्वेज सिक्किमिस फिल्म शेप ऑफ मोमो को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है, जो इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म के रिलीज से पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रीमा ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिप्रेजेंटेशन को लेकर अपने विचार रखे। उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की कहानियों और संस्कृति को मेनस्ट्रीम सिनेमा में और अधिक जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के अलग अलग हिस्सों की कहानियां भी बड़े पर्दे तक पहुंचनी चाहिए, ताकि देश की विविधता और सांस्कृति विरासत को लोग और अच्छी तरह समझ सके। तो दोस्तों ये बात सच भी है कि नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट और कहानियों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिलने की। और जब रीमा कत्ती जैसे फिल्म मेकर इस दिशा में काम करते हैं, तो ये सिनेमा के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो दोस्तों अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टेरर चांद मेरा दिल को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। फिल्म से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर कुछ खास मजबूत नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 20 करोड़ रुपए और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार नहीं किया और दूसरे हफ्ते में कलेक्शंस में और गिरावट देखने को मिली है। हालांकि फिल्म ने म्यूजिक और कुछ इमोशनल मोमेंट्स को ऑडियंस ने पसंद किया है लेकिन मिक्स रिव्यूज का असर कलेक्शंस पर साफ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बॉलीवुड में कई बार ऐसा होता है कि एक फिल्म रिलीज से पहले काफी सुर्खियों बतौर लेती है लेकिन ऑडियंस के फाइनल फैसला ही उसकी सफलता तय करती है।

दोस्तों, बात करते हैं उस खबर की जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हुई है। फिल्म चांद मेरा दिल में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम फ्यूजन डांस सीक्वेंस को लेकर

दोस्तों आपको बता दूं, कई भरतनाट्यम डांसर्स और क्लासिकल डांस लवर्स ने अनन्या के परफॉर्मेंस को लेकर अपनी अलग अलग राय रखी है। कुछ लोगों का कहना है कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स को और अधिक ट्रेडिशनल अंदाज में पेश किया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग फ्यूजन और एक्सपेरिमेंटेशन को कला का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। इसी बीच मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर अनन्या पांडे के सपोर्ट में सामने आए हैं। संदीप का कहना है कि डांस एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है और आर्टिस्ट को नए स्टाइल्स और नए एक्सपेरिमेंट्स करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों कला की दुनिया में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। हर कलाकार अपनी सोच और क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया पेश करने की कोशिश करता है और ऐसे वजह से कभी कभी ऐसे मुद्दे चर्चे का विषय बन जाते हैं। तो दोस्तों फिल्मी दुनिया की ये थी आज की कुछ खास और चर्चित खबरें, और अब वक्त हो चला है एक चौथे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप सुनते रहिए अपने पसंदीदा गाने अरुण एफएम पर, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे फिल्मी गपशप के और भी मजेदार अपडेट्स, बॉलीवुड ट्रिविया और सितारों की दुनिया की दिलचस्प बातों के साथ। आइए दोस्तों कुछ गीतों का आनंद उठाते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त केजे कनिक। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिल्मी गपशप कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं आगे बॉलीवुड की अगली खास खबरों की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कियारा आडवाणी और सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की। दोस्तों इस फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं और फिल्म को लेकर हर नई अपडेट सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में कियारा आडवाणी ने फिल्म की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। कियारा ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर गीतू मोहनदास चाहती थी कि सेट पर आते ही वो अपने कैरेक्टर के मोड में रहे, इसलिए गीतू ने उन्हें सेट पर किसी को ग्रीट करने या सैल्यूट करने का या बातचीत करने का

कोई भी मौका नहीं दिया। दोस्तों कियारा ने बताया कि डायरेक्टर का मानना था कि कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी को महसूस करने के लिए एक्टर को पूरी तरह उस जोन में रहना जरूरी होता है। कियारा ने कहा कि ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था और इस प्रोसेस ने उन्हें अपने रोल को और गहराई से समझने में मदद की है। वैसे दोस्तों हर डायरेक्टर का काम करने का अपना ही एक अलग अंदाज होता है और कई बार ऐसा मेथड्स एक्टर्स की परफॉर्मेंस को और भी बेटर बना देता है। और दोस्तों अब देखना ये होगा कि टॉक्सिक फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है।

दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय रणवीर सिंह की, जो इन दिनों अपनी मेगा बजट फिल्म रामायणा को लेकर चर्चा में है। दोस्तों फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस फिल्म पर काम करना उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी भी रहा है। रणवीर ने कहा कि रामायणा ने उनकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने ये भी शेयर किया कि इस फिल्म से मिली सीख ने उन्हें अपनी बेटी राहा के साथ और ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदारी पिता बनने में मदद की है। दोस्तों जब कोई एक्टर किसी किरदार में इतनी गहराई से डूब जाता है तो उसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी नजर आता है, तो समझ लीजिए कि वो रोल उसके दिल के बहुत करीब है। और दोस्तों अब चलते हैं बॉलीवुड के एक मजेदार और नॉस्टैल्जिक खबर की तरफ। तो दोस्तों मशहूर फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में अपनी कुकिंग ब्लॉग में एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी के साथ पुरानी यादों का पिटारा खोला। घर पर कुकिंग और मस्ती के दौरान फराह ने अपने परिवार के संघर्ष भरे दिनों को याद किया। फराह ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके परिवार को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान उन्होंने फिल्म मेकर आयान मुखर्जी के पिता और वेटरन एक्टर देव मुखर्जी से जुड़े एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया जिसने ब्लॉग को और भी एंटरटेनिंग बना दिया। दोस्तों आज हम जिन सितारों को सफलता की बुलंदियों पर देखते हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर देखे हैं। शायद इसी वजह से उनकी सक्सेस स्टोरीज और भी इंस्पायरिंग बन जाती हैं। और अब बात उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही एक्शन और स्टाइल याद आ जाता है। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ फिल्म डॉन की। रणवीर सिंह और डॉन फ्रेंचाइज को लेकर लगातार नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। फैंस का एक्साइटमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जब से रणवीर सिंह का नाम ऐलान हुआ है, तब से लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि वो अपने अंदाज में डॉन के आइकॉनिक कैरेक्टर को किस तरह पेश करेंगे। शाहरुख खान के बाद इस लेगेसी को आगे बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और यूनिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया से ये थी कुछ दिलचस्प बातें और आज की बॉलीवुड खबरें बस इतना ही। और अब चलिए दोस्तों वक्त हो चला है एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है निकल लो भाई, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
2: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
3: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
2: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लायान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउंग लायान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000

0: हजार मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, began his 5-day visit to India today. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Min Aung Hlaing to India in his current capacity. He arrived at Bodh Gaya in Bihar this morning, where he will offer prayers at the Mahabodhi Temple and also at Sujata Temple. President U Min Aung Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar this evening. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. The Ministry of Health and Family

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर केंद्र का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। लीजिए दोस्तों, अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां गाने भी आपके पसंद के और बातें भी आपके दिल से।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

चलिए दोस्तों, रेडियो दीवान कार्यक्रम का आज का पहला रिक्वेस्ट लेते हैं। और आपको बता दूं, पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है जुमकर बागरा और उसकी बीवी गुम्मे माई ने। और वो हिगी बागरा गांव के रहने वाले हैं और उन्हें सुनना है फिल्म नाचे मयूरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें भेजी है अस्मिता बसुमतारी जी ने। और बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। दोस्तों, अस्मिता जी ने फरमाइश की है एक बेहद खूबसूरत और एवरग्रीन रोमांटिक गाने की, जो आज भी लाखों दिलों की धड़कन बना हुआ है। ये गाना है फिल्म राज से, और इस मधुर गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है मशहूर गायिका अलका याग्निक और उदित नारायण ने। प्यार, विश्वास और जज्बातों से भरा ये गीत आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है। तो अस्मिता बसुमतारी की फरमाइश में आप सभी श्रोताओं के लिए ये गीत RNFM 103.1 MHz पर।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
3: दोस्तों। अब वक्त हो गया है एक और खास फरमाइश का, और आपको बता दूं ये सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है रोमिस पत्रो, रुनु पत्रो और लकी ने घोलाघाट आसाम से। इन्होंने ये प्यारा सा गाना डेडिकेट किया है अपने सभी दोस्तों को जो इस वक्त अरुण एफएम सुन रहे हैं। तो दोस्ती के इस खूबसूरत एहसास को और भी खास बनाते हैं अपने दोस्तों के नाम ये शानदार नगमा। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

दोस्तों चलिए लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है अमल बसुमतारी ने, जो सोनितपुर आसाम के रहने वाले हैं। और उन्होंने ये प्यारा सा गाना डेडिकेट किया है अपने दोस्तों के नाम, जिनके नाम है बाइकॉन, बिमल, रोमेश, दुर्गेश, जोगेंद्र और हितेंद्र। आइए दोस्तों उनकी फरमाइश में सुनते हैं इस गीत को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत का आनंद लिया ज्योति सुरेन की फरमाइश में, जो हेलम आसाम के रहने वाले हैं। और चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है चराइडियो सोनार आसाम से, और इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है बाइकॉन मुंडा ने।

चलिए दोस्तों, अगले गीत का आनंद उठाते हैं। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है गिरेन टेरोन ने कर्बी अंगलोंग से, और उन्हें सुनना है आंदोलन फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के आवाजों में।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है आयरिस की ओर से, जो शिलोंग के रहने वाले हैं। और दोस्तों, आयरिस सुनना चाहते हैं खुद को मिलो बाय तावा चाके। साथ ही उन्होंने एक प्यारा सा मैसेज भेजा है कि वो अरुणाचल के आर्टिस्ट के बहुत बड़े फैन हैं और उनके म्यूजिक को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आयरिस, आपके लिए और अरुण एफएम के सभी लिसनर्स के लिए पेश है ये सोलफुल ट्रैक। एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो जिन श्रोताओं का रिक्वेस्ट आज हम नहीं बजा पाए उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, हमारी कोशिश रहेगी कि कल सुबह के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में उसे जरूर बजाएं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही हमारी पहली प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेंगे आपके अपने आरजे डाकमे नानास। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गीची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजंग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक

0: विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya, Bihar today as part of his 5-day official visit to India. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. He will offer prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple at Bakraur. The Myanmar President will also visit several Myanmarese Buddhist monasteries in the region. President Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar this evening. Tomorrow, the Myanmar President will be expected to participate in Myanmar-India Business Forum. On Monday, President Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bade farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying a wreath at the war memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with the Tri-Services Guard of Honour. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure as satisfying and excellent. In Punjab civic body elections, the ruling Aam Aadmi Party won 958 of the 1,977 wards across 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 19 Nagar.

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, ये है आकाशवाणी का रूल एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे नहास। और इससे पहले आपके साथ थी आप सबका मन पसंदीदा आरजे गिजिक कनिक जो बनी हुई थी आप सबके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा में। और अब दोस्तों हमारे स्टूडियो में बज चुके हैं 11:10, यानी अब शुरू होगा हमारा दूसरा पेशकश। और इस दूसरे पेशकश में मैं बना रहूंगा आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे नहास। तो दोस्तों इस दूसरे पेशकश में आप सबको आज मिलेगा कुछ ताजा तरीन खबरें और मनोरंजक कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं आज के इस सबक के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता तिंते। तो चलिए देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द बकबक सेशन विद आरजे नना।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी लहर में। जी हाँ दोस्तों, इस सब का पहला शो आप सुनेंगे, कार्यक्रम फिल्मी लहर। आइए दोस्तों, इस शो में हम सुनाएंगे आपको आज एक बेहतरीन गीत। चलिए दोस्तों, इस शो को शुरू करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ, फ्रॉम द फिल्म दिल है तुम्हारा, जिसे गाया है आलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू ने। जी हाँ दोस्तों, ये गीत है मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारे हैं। तो आइए सुनते रहिए अरुण।

लीजिए दोस्तों पेश है एक और बेहतरीन गीत उदित नारायण की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म क्यू हो गया ना। जी हाँ दोस्तों, ये गीत है आओ ना, ओनली ऑन अरुण FM 102.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.

0: और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम फिल्में लहर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं वेस्ट की हवाओं की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Hello everyone, this is Kamsan, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Today's session explores a more delicate side of emotion. It's about love, loss and longing. These are the songs that speaks of relationship in all their complexity. It's about moments of joy, separation, reflection and healing. So let's start today's session with a song that feels warm and grounded. It speaks of closeness and affection in a small, in a simple, heartfelt way. Here's Your Man by Josh Turner. Please enjoy.

0: और दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी

0: Hajj mission has received two prestigious Labittum awards from the Saudi Ministry of Hajj and Umrah for excellence in Hajj coordination and communication. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The India Meteorological Department has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. In cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 International in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अब चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आपको कुछ बेहतरीन गीत इन द कार्यक्रम यादों की बारात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की बारात में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों, ये शो, इस शो में बजे सारे गाने हम डेडिकेट करते हैं हमारे ओल्ड और सीनियर सिटीजन्स को। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस शो में पहला गाना, किस्मत की हवा कभी नरम, फ्रॉम द फिल्म अलबेला, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

लीजिए श्रोता दोस्तों, पेश है आप सबके लिए सॉन्ग प्यार हुआ इकरार हुआ फ्रॉम द फिल्म श्री 420, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मना दे। एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, मैं लौट कर आता हूँ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

और चलिए दोस्तों आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनारी से, जो बनी थी 1959 में। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को गाया है मुकेश ने और ये गीत है इस फिल्म का आइकॉनिक टाइटल ट्रैक। जी ना इसी का नाम है, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और सुनो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम यादों की बारात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। अब दोस्तों चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। अब आप सुनेंगे गीत माला।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के कार्यक्रम गीत माला में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में AR रहमान की आवाज में वंदे मातरम।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

और लीजिए दोस्तों पैसे अगला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में फ्रॉम द फिल्म रेड. गीत है सानू एक पल चैन ना आवे. ओनली ऑन अरुण एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात.

0: और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गीत माला। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री दिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार

0: Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi and Chhattisgarh. In IPL cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सो हिंदी क्लासिक म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, आइए इस शो में सुनते हैं पहला गाना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मचारी। जी हां दोस्तों, लीजिए पैसे, ये बेहतरीन गाना आप सबके लिए। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: 3.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार. ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है. यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है. अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके. मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है. जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है. भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे. आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें. बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके. जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए. तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले. पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें. प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें. बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें. और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371. धन्यवाद.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to rupees 52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास. चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद अब सुनते हैं कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स. और सबसे पहले अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर के आवाज में फिल्म नूरी का ये बेहतरीन गाना. जी हाँ दोस्तों, चोरी चोरी कोई आए. लीजिए पैसे आप सबके लिए ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात.

तो मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आइए सुनाते हैं आपको कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, उसके बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

तो श्रोता दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब श्रोता, अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीतों के सिलसिले के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब शुरू होगा वो कार्यक्रम जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां दोस्तों, अब आप सुनेंगे हिट्स ऑफ 90s।

हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजी ननास, और स्वागत है आप सबका कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। जी हां दोस्तों, आप मेरे साथ अब करेंगे टाइम पे सफर। जी हां दोस्तों, हम चलेंगे सीधा हिट्स ऑफ 90s की उस क्रेजी एरा में। याद है ना वो दौर जब गानों का मतलब होता था दोस्तों की कैसेट्स बोरो करना, वॉकमैन की बैटरी बचाकर सुनना और हर गाने की लिरिक्स डायरी पे लिखना। नो स्किपिंग, प्योर फीलिंग्स। दोस्तों ठीक है, चलिए आज की शाम को थोड़ा और नॉस्टैल्जिया से भरते हैं, लेकिन एक ऐसी बीट के साथ जिस पे हम सब ने कभी ना कभी बड़े अजीब से डांस स्टेप जरूर ट्राई किए। आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फ्रॉम द फिल्म जानम समझा करो, जो बनी थी 1999 में। यह दोस्तों एक गीत है, चांदनी आया है तेरा दीवाना, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है।

और दोस्तों इसी के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में फ्रॉम द फिल्म बादशाह। ये गीत है हम तो दीवाने होइया ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। ये गाना एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए, मैं लौट कर आता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to Rs. 52,100. Offer till stock.

lang lang Myanmar Buddhist Monasteries bodh gaya la taimang da khrai thau ra ka Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha ka bi gaya airport her phone ka da khrai thau mun ra ka Union Home Minister Amit Shah ka government one border security force wi lang lang responsibility fit samang na thau tha ka security challenge one ring dot ra hi ra ka BSF personal san wi tangman buch Gujarat lag bang inwe thau ka hai quadrangular security gate तो तरह समांग ना था का ट्रेडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी वन तम्बलाई रकम इस तरह का था का अन इनिशिएटिव वन पब्लिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस आर्म फोर्स नंग बीएसएफ नंग रिंग रोने राने काम करते हैं कनेडा था का रकम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस APSTS वन बैंग इन वे तांगता था दादला कौन सा तिराप डिस्ट्रिक्ट है बोलेंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन का स्टेट फॉर रेस्टोरेंट बस रोड सेफ्टी अवेयरनेस बस वरा का लग्जरी बस ने फ्लैग ओपन करा दार ला कौन सा लग वलंग स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड एलाइड मिनिस्टर ओजिंग तशिंग का एडवाइजर टू होम एंड ट्रांसपोर्ट चकत अबोत वा चंग तलक रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन ने फ्लैग ओपन करा दार ला कौन सा लग वरा का स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सेन का कोऑर्डिनेशन मीटिंग था करा दादला अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वरा का दूरदर्शन केंद्र फाय निर्वाचन भवन इटानगर लग वलंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल वन दामिक था करा दादला वरा का सीईओ का आईपीआर डिपार्टमेंट दूरदर्शन आकाशवाणी इंसान हताय सेट पार्टनर दो दाथो था का ट्रांसपेरेंसी अवेयरनेस वरा का पब्लिक कॉन्फिडेंस इंसान ही काम का मन ही रा का माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का इंडिया हज मिशन वी लिबर्टम अवार्ड थाना दखाई था का सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज नंग उम्र वाई हज कोऑर्डिनेशन नंग कम्युनिकेशन हेडिंग काम का मन ही रा कभी भी सऊदी अरबिया ग्रेटिट्यूड नफी कर अदात ला रा का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडो का बैंक इन स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पब्लिक बिल्डिंग सेक्रेटरियट लग फाउंडेशन स्टोन ठाकरा दादला एमएलए तेची कासो नकब नालो रा का रोड बुइतवा चंग तलग रा कभी सोशल मीडिया हेलाम का थाव का अन वन इमरजेंसी रेस्पॉन्स का हताई काम हुमांग ना थाव था का वलंग एडवांस कंट्रोल रूम कम्युनिकेशन सिस्टम कन्फ्रेंस हॉल इमरजेंसी ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान ने कामांग ना थाव था का रा का लिरोमोबा एमएलए पेसी जिलेन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस फॉर लिरोमोबा कांग ऑफिशियल गाड़ी ने फ्लैग ओपन करा दादला वेस्ट चंग डिस्ट्रिक्ट है ग्रेटिट्यूड पीम ने डॉक्टर जुमरी रोमिन का अन व्हीकल वन लिरोमाबा सर्कल का तय काम हम मांगा था का रा का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का था का री इवेल्युएशन नंग वेरिफिकेशन क्लास के मुख्य आंसर पेपर वन यशी लाई तारीख मोले का शुरू से मांगा था का रा का स्टूडेंट्स वन CBSE हेल्पलाइन नंबर नंग ईमेल ही तने का इंक्वायरी से नगद चुन मांगा था का रा का नेशनल ई कॉन्फ्रेंस 200 years of Hindi journalism, Indian knowledge system, vernacular media, and cultural renaissance. One bang in my tongue got out of that la. One lang academics ng media professional India puhe ho got out of that la. Ragangin kin conference one, Department of Mass Communication and Journalism, University of Ladakh, Kargil campus, Uraka Department of Mass Communication, Arunachal Pradesh University, Pasigat, Msana Rune ka katmata da khai thao. Uraka Kamesa cricket, India ng England second T20 international khilimata da da la dongin Bristol lag munja match 1 baji nan leka samana da la Indian standard time lag ra ga Gujarat Titans 1 Rajasthan Royals pe ka da da la nga howay ra ka win IPL final 1 Royal Challengers Bengal fai khilimata da khai thau mun ra ka Prime Minister Narendra Modi man ki baat program kan mang da khai thau country chong san vitrang ra akashwani helam ka अन न्यू फा चंबुरा वये मो संगे मो कमन एपिसोड समन दा खाय थाम राका चोंगसिन ने आइडिया नंग सजेशन अन फिट चनमन दा खाय थाम 1800117800 टोल फ्री नंबर हि फोन गने का राका नरेंद्र मोदी एप नंग माय गोप ओपन फोरम हि लाम ने फिट चनमन दा खाय थाम राका मिस कॉल ने 1922 हि पिने काम जाम है मेसेज लिंक मंग जाम हि लाने फिट चनमन दा खाय थाम राका सिलेक्शन ट्रायल क्लैन सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप लो हिंगिन तलमक ताम दंगिन लेका तात माता दा खाय थाम अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन हेड क्वार्टर ने जुली लग मदा न चंबुई गा बिसी मचोंग पार्टिसिपेट कन गा दा खाय थाम रकम जाम न सेलेक्ट सम कमो लायरा
tarik kemo kemo le kemo kemben mo lampat main stadium manipul le khili mata da khrai thaum ra kan thaum le kemang king lai kong song phaim to pyolum to lang tan jai gat je

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे ताई कांती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे द कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हां दोस्तों, आइए इस शो में हम आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के चमकते दमकते दुनिया से कुछ ताजा तरीन और मसालेदार खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि यहां होती है दिल से दिल की बात।

हेलो मेरे बी टाउन स्किल लवर्स, ऐसे हसीन मौसम में अगर गर्मा गर्म बॉलीवुड गॉसिप मिल जाए तो शाम का मजा डबल हो जाता है, राइट? और बॉस, आज मेरे पास बी टाउन की ऐसी खबरें हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। लीगल नोटिस, इंटरनेशनल चेकिंग्स और डिजिटल डिटॉक्स, आज बॉलीवुड में सब कुछ हो रहा है। सो सीट बेल्ट बांध लीजिए, अगले 5 मिनट तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के अल्टीमेट एनर्जी बॉम्ब रणवीर सिंह की। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह इस वक्त हर जगह ट्रेंड पे है। एक तरफ उनकी अपकमिंग मूवी डोन 3 से एग्जिट वो को लेकर मैसिव कंट्रोवर्सी चल रही है। इवन फिल्म बॉडीज लाइक FWICER इन्वॉल्व्ड, बट गेस व्हाट, रणवीर इज कीपिंग हिज कूल लाइक अ प्रो। फिलहाल वो बुडापेस्ट में चिल कर रहे हैं और उन्होंने आर्सेनल के फुटबॉल स्टार डेक्लन राइस के साथ एक सुपर कूल पिक्चर पोस्ट की है। फैंस आर कॉलिंग हिम द रियल धुरंधर। स्पीकिंग ऑफ धुरंधर, उनकी मूवी धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर आग यानी तबाही मचा रही है, क्रॉसिंग द हिस्टोरिकल 1140 करोड़ मार्क डोमेस्टिक नेट। मतलब बाबा इज अनटचेबल राइट नाउ।

मूविंग ऑन टू करण जौहर। दोस्तों, करण जौहर ने इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक लाया है। उन्होंने अपने फेवरेट शाहरुख खान, करीना कपूर और आलिया भट्ट को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, बट करण ने क्लियर किया है कि इट इज जस्ट ए डिजिटल डिटॉक्स। पर पब्लिक कहां मानती है, स्पेकुलेशन तो शुरू हो चुकी है।

चलिए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ी लीगल फायर की तरफ। वेटरन प्रोड्यूसर वासु वगनानी ने वरुण धवन और देवी धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की मेकर्स पर पूरा 400 करोड़ का लॉसूट फाइल कर दिया है आइकॉनिक सॉन्ग चुनरी चुनरी के अनऑथराइज्ड यूज को लेकर। डेविड और वरुण के फैंस थोड़े टेंशन में हैं। लेट्स सी ये मामला कोर्ट के बाहर सॉल्व होता है या बड़ा ड्रामा बनता है।

चलो दोस्तों थोड़ा बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट कार्ड देख ले। करण जौहर के प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा चांद मेरा दिल स्टारिंग अनन्या पांडे और लक्ष्य हैज ऑफिशियली क्रॉस्ड द 20 करोड़ मार्क इन इट्स सेकेंड वीक। डिस्पाइट फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉलीवुड स्टार वार्स, मूवी धीरे धीरे ऑडियंस का दिल जीत रही है। हालांकि अनन्या के भरतनाट्यम डांस स्टेप को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आउटरेज चल रहा था, पर उनके डांस मेंटर ने सबको चुप कराते हुए कहा, दिस आउटरेज इज एब्सोल्युटली रविश। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की दुनिया से कुछ ताजा तरीन और मसालेदार खबरें। आइए दोस्तों इस शो में सुनते हैं कुछ एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात,

दोस्तों फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात एमवी जिसे गाया है सुनिधि चौहान और सलीम ने। जी हाँ दोस्तों, सुनते रहिए ये गाना और बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: और दोस्तों, इसी धमाकेदार गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट, जहां हमने सुनाए आपको कुछ बॉलीवुड की दुनिया के चमकते दमकते दुनिया से कुछ ताजा तरीन खबरें और एक बेहतरीन सॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग के साथ।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर आनी मेले मा नि सबन तारीख होनी बार इरुमा केम वांचो साय का हो वांग वांग ना हो वांग ए का हो पाई फाले मंचुई यमे कमे म्यानमे प्रेसिडेंट युमिन आंग ल्यांग इंडिया तो नि गा हान पाक आंग आनी बोट गाया तो वांग ले मा बोडी टेम्पल बोमा सुजाता टेम्पल नि तोंगुइले रंग जुसोमले प्रेसिडेंट हलवे बोट गाया मवे Myanmar Buddhist Monasteries Buto Paulechu Ahamaka ka taike boma haya thoma Gaya Airport ma chivan ponle Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha tanle nuile Yonen Home Minister Amit Shah chahu ranhu mot phanmong le thamka rongma government ji makhang border security force BSF tham ang mot moklengo ko to bole chatle chu ko ai lewanle हालेमनी गुवाहाटी तो तंपाई हालेमनी गुजरात तो भूषमा बीएसएफ पर्सनल थम तु सो ओखम का मची ए हासत लोंगरी खुई खप मोट फान मोंगले थम के रोंगमा क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड ले रिंग आई लंगाई के बोमा हलके सत मोट बामा यंग यंग खनाक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस आर्म फोर्सेस अंतोले बीएसएफ पर्सनल थम बामा ले आता आता भाई आसाम ले मकंग मोट लाका ले चे हासत लोंगी पोंग बुटो रानहु मोट फान मोंग ले थामके रोंगमा स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट तो मकंग का बाम चु वन रे लेंगो तांते बुली चु वन ले अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस एपीएसटी थामपु रंगपुनी बन गुई के सेन मा तिरप डिस्ट्रिक्ट तो खुनसा मा गोल्डन जुबली टूसो मनी मखांगा तुजाले हाया फाइ के आंगले खुन सामा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन ए पोंग वांग लेके रेस्टोरा बस रोड सेफ्टी अवेयरनेस बस बोमा लग्जरी बसेस होरन बुतोल फुमरम ले अकाट वन ले हा फाइ तमले स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड अलाइट मिनिस्टर ओजिंग टासिंग ए खुन सामा एडवाइजर टू होम एंड ट्रांसपोर्ट चाकात अबो फमतोमा रान फॉर रोड सेफ्टी लेके माराथन रिगमा अपानंके तो फुमरम लेको ले स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सेन ए मनी ईटानगर मा अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अपला इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस आईपीआर डिपार्टमेंट बोमा दूरदर्शन केंद्र दिदी के खातो के ले ऑफिसर्स बुपे निर्वाचन भवन मा कोऑर्डिनेशन मीटिंग ला ले हायमा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ए रेतो बंडव के इलेक्टोर्स थम मन अपट के बोमा रोल संघ के हबीबा थम मंचू रटवत अंग लेके इलेक्टोरल रोल्स बामा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो मोकलेंगो के सतमोट बामा वनकोले इलेक्टोरल प्रोसेस मा चाहती का होमी बोमा जंग जंग खनक नु ले मोटो अबकु हेते पोले का बामा वनके मा सीईओ ए वाटर बुआंग होनपोजेनो लेको जंग जंग खनक नु मोंगोंग कप ले आईपीआर डिपार्टमेंट दूरदर्शन बोमा आकाशवाणी ले मोसत पोंग रेनु मिलाऊ थापते पुलवन ले अनि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ए इंडियन हज मिशन ए पोंगवांग लेके आंग हज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन सत मोट खोमा साउदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा तो के खा खा खा के लेबेटुम अवार्ड्स अनि जो कप ले ले होले मिनिस्टर ए साउदी अरबिया नोक्टो रंगशोम मी अहम अतै के तोफोंग ले को के खोमचु मैपू ले फुमरम ले चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए मनी ईटानगर अंक सिविल सेक्रेटरी मा एमएलए तेची कासो नाकप ना लो बोमा रोडे बुई होम पम्थोमा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सीईओसी कम स्टेट डायस्टा मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए ऑफिस बिल्डिंग रिंग अंक फाउंडेशन स्टोन अजोंगले सोशल मीडिया मा खांडू ए हया स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मखांग ए स्टेट डायस्टा Preparedness and Emergency Response System Satmotpan होता तो कनिंग ले चिचंग ले ना मैं है ले वन ले ची ए हजा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मा एडवांस कंट्रोल रूम्स कम्युनिकेशन सिस्टम कॉन्फ्रेंस हॉल्स इमरजेंसी ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ले जोंगतमा पांगवाई अक्यकलता इलिचु वन ले लीरोमोबा एमएलए पेसी जीलेन ए मनी वेस्यांग डिस्ट्रिक्ट तो लीरोमोबा अंके असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफिस मा ऑफिस हानपक मा ऑफिस गाड़ी तो पुमलम ला पौले हायमा एमएलए ए हजा तिंखो खा खनक नु जोंपोंग मोटो ना हाय को लेवन ले हायमा डॉक्टर जुमरी रोमिन एचु हजा गाड़ी हलेको के खांग ए लीरोमोबा सर्कुल मा एडमिनिस्ट्रेटिव सट मोटो अहमतय अंग मई लेवन ले Many Central Board of Secondary Education CBSE ayak rangpong class 12 answer paper bama TikTok ang post result activities portal mod jun tatok khang e mokai lehole board e hayam khang e evaluation mod sautha le mokang mai lichu hole hayabama TikTok se theba line note no sambu e CBSE's daily helpline number boma email makhang ele TikTok chokai 200 years of Hindi journalism, Indian knowledge system, vernacular media and cultural renaissance leke bama national e-conference mani makhang hovang wangke ma India ke laitik laiman mi boma chaitik ka homi thamle reinu meyo hakle hayani ni national e-conference hale University of Ladakh Kargil campus tukadupa

0: चलिए दोस्तों, समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे दुमिसमी श्रोताओं का समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे कुछ हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है ईदु मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी ईटानगर शुला पुची जासू हूँ मानोली ने एतानी ईदु मिश्मी आहोला के जी दरगालंबो मंगाने के बने इंडिया मा मेलो ग्याचा म्यांमार माचे प्रेसिडेंट यू मिन अंग एलांग मैम ओना बिहार माचे बोध गया मा खिमु बता आहोगा आ मैं महाबुद्धि दोने सुजाता खुमु मा खुए बने आ तिकाचे किसा बुद्धिस्ट खुमु मा खु ओ बता ला होगा आ मैं ओना गया एयरपोर्ट मा दोए मुदो बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा मैं छा तकाचिदा ला होगा गवर्नमेंट में आतिका पेमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ चपहलम्रो आदा उगाजिदा ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह में पुनी गुजरात मचे बुज आतिका ने बीएसएफ चपहलम्रो को

0: जगह महो लगाने को रेंगुल सिक्योरिटी ग्राइड आज ते करने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस बीएसएफ तो ने एक इशा पब्लिक इमु में अति बुझी पुआ अतुगा नौ दा लाय बदा आहोगा बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट मा जी खुंसा तिको ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस एपीएसटीएस खावे बा मंगाहो नुबा इनी एना पगाम बा माने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन में मैं बस उखो हामु रेस्टोरेंट बस ले आई डोंट नेम आई छिमा अतुगा टू ची पुआ अलाजी ने बस के असला के ने आहे बदा आहोगा आतिकाची एमएलए दोने होम मिनिस्टर लारेगा जगत अबू दोने किसा एमु उखो इगा दू माने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग में मैराथन थुया असला के ने आहे ओबासिदा आहोगा अरुणाचल प्रदेश चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर आजा पवन कुमार सेन में बुनी ईटानगर से निर्वाचन भवन माने अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली आईपीआर दोने दूरदर्शन मचे आजा लम्बरे तेगने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर को माने बोर्ड आजपो आज अपन बहुत ची पुआ ची जगह ने बोर्ड हाई हुए मंदो ची बोर्ड आजपो मा ऐते हुए ऐ दोने हाई मिंग मंदो ची बोर्ड आजपो माने अमु हिलाओ के बने एस आई आर अखगा जिता लाके बदा आहोगा आई पी आर दूरदर्शन दोने आकाशवाणी लापरागे आहो मीडिया में इलेक्शन जोता आर हुए अचुखा गदा ने सेंड में लाओगदा आहोगा इंडियन हज मिशन है सऊदी हज मिनिस्ट्री में लवियतुम अवार्ड लापरागे चाहवा ने हेंदो अवार्ड कानी हंगा बदा ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू में लगाता आहोगा ईटानगर चीफ सिविल सेक्रेटरियट मा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एस ई ओ सी दोने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस डी एम ए गेबा ओम आज तेगा नाव चा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में बुनी अलाप्रा आकाची हा बदा आहोगा अली अजित्य पाओ अतिका मा आचा चारुगा मिंग महो पेहा आरोता पेहा मशादा ने चीफ मिनिस्टर में लाइव बदू मा एम एल ए का सो तेजी का सो नकप नालो दोने रुदे बुईबू की ओ बदा ला होगा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लिरुम्बा ए सी ऑफिस के बने मने लोटिया गाड़ी है लिरुम्बा एम एल ए पेशी जिले में बुनी असला के गने आखे बदा होगा लिरुम्बा सर्किल आतिका मचे आतिको शमा जो ताठो ने जिगा अली गाड़ी हाई में तांदो प्रभुगा चिता ने डॉक्टर जुमरी रोमिन में लगाता आहोगा लिबाचा सी बी एस ई क्लास खुड़ुनी एग्जाम माचे आंसर पेपर का कोपरा है इगा वे थाला पुची एला में माचे इन ऑनलाइन अतु सुजिगा उदा ने सी बी एस ई माचे में ला होगा ने आज हित में सी बी एस ई ची हेल्पलाइन आई बुया ई मेल माने आ चिपुआ ताहि जिगा उदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में माओका निनुबा हिंदी आहोजोला थोपु चिपुआ अनि निगे बने ऑनलाइन माने नेशनल कॉन्फ्रेंस अखगा महोम आग ई कॉन्फ्रेंस है लद्दाख यूनिवर्सिटी कारगिल कैंपस मचे मास कम्युनिकेशन दोने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट आई दोने पासीघाट अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मचे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आरोगा गने अखने गला दा ला होगा इंडिया मचे याकू क्रिकेट टीम में अबुनी इहु बाजी माने मेको इंग्लैंड गो ब्रिस्टल आतिकोने एमगाई बोदा आहोगा महो आई पी एल मा गुजरात टाइटन्स में राजस्थान रॉयल्स आने गए ने फाइनल मा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को एमगाई बोदा ला होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने आकाशवाणी माची मन की बात प्रोग्राम मा ने अतिकाचिगा न्यू अची आऊ मचिगा एको बो ला हे नबाउ मा एन एच आऊ मचिगा एको बो आखन बोदा हुई बंदो में पाऊ बलाओ कुमी खेगे यू जीरो जीरो खे खेगे यू यू जीरो जीरो दोने खेगे खेनी खेनी कानी फोन नंबर आई दोने नरेंद्र मोदी एप में बुया माई गोव ओपन फोरम मा ला के तो जी ना ला होगा एटा निची ईद मिसमी आहो अली माओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाली ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एटा नि हेंदो आई चो मेनो ची चा छि छि अहो जी
1: तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे इदुमिसमी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों अब सुनाते हैं आपको कुछ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।

तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके बाद आप सुनेंगे तानसा श्रोताओं का समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाला है, आप जुड़ेंगे आप सबका मनपसंदीदा आरजे साजिद इकबाल, जो बने रहेंगे आप सबके साथ हमारे तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:19, यानी अब मुझे अलविदा कहना होगा इस स्टूडियो को। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी धोले और तकनीकी अभियंता टिमटिम। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस सभा में बजे सारे कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। तो अब मुझे यानी आपको उद्घोषक आज नमाज को दीजिए इजाजत। शुभ दिन।

이르 아카스바니 이타나글 디브루콜 마초사 두밧 랑크로 메이저링랑 것은 세이타릭 아라오 랑자 바레이바지 쿠미닛 톨겸소 당사 프로그램 더 팡라이 룽나루 고항 와심캥랑르 미얀마르방 프레시덴 오민 옹 헬렌 버 사방아랑 인디아낭 왕라우 마초사 보드가야낭 토반등으로 더 버주와 비르 모하부디 템플 내 히스토릭 수자타 템플 낭 프라노 코드 브르모 미얀마르 프레시덴트 보드가야 왕 미얀마르 부디스 모나스트리 만 라이코트 무루 드 벌거체 가야 에어포트 낭 비하르 왕 에그리컬처 미니스터 비제이 쿠마르 시나르 미얀마르 왕 프레시덴트 퍼 타우칼락 드 무루 드 시큐리티 카우 낭 아한 가장 르퍼 아행 머라이 마이모 보더 시큐리티 포스 BSF mo akhau areng area tam ku mo government ro lamro ngorau Home Minister Amit Shah ru tu manai Gujarat nang Bhuj nang BSF personnel heng mo maso phan ro quadrangular security grid man mo Home Minister ro announce kuri tu arau prakam lam tanang public civil administration local police armed forces nai BSF personnel heng tung nang karum ro kamal lam tungo ru tu Arau Smart Border Security Project andar mo border nang security grid pa seheng mo lamrang uruk Arunachal Pradesh State Transport Services APSTS pangbang yong so thogru sakan pa sering rau manai Tirab District nang Khunsa nang Golden Jubilee Celebration tagyang tu. Arau Paras Celebration tagyang ru nang Deputy Chief Minister Chawna Men ra Khunsa nang Restaurant Bus Road Safety Awareness Bus Parma Anya Luxury Bus Tampa Flag of Kuritangu Ru Ke Ada Uparju Home Nai Transport Ma Advisor Chakat Abo Man Atongu Tenang State Transport Services Nai Allied Minister Ojing Tasing Re Kunsa Anang Run for Road Safety Marathon Pa Flag of Kuritangu Ru Ke ईटानगर नंग मने निर्वाचन भवन नंग स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सेन र अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इंफॉर्मेशन ने पब्लिक रिलेशन आईपीआर पर म दूरदर्शन केंद्र डीडीके वंग ऑफिसर हिंग जाम कोऑर्डिनेशन मीटिंग का थुंग तंग रूप पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर र मसो फंत नंग वसरोप एलिजिबल इलेक्टोर्स हिंग पर लाम अराउ इन एलिजिबल वन पर इलेक्टोरल रोल वंग लंबाग म Electoral Roll Special Intensive Revision tegyang rekomung nang fante arau perju electoral process nang media role nei public communication areng tairengo rukte permo transparency voter awareness nei public confidence rang mo IPR department Doordarshan nei Akashvani ra areng institutional partner tairengo rau chief electoral commissioner ra fante हज कोऑर्डिनेशन नई कम्युनिकेशन काउ म साउदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमराल फंगवांग अफंगलग इंडियन हज मिशन र अनई प्रेस्टिजियस लाबांगतुम अवार्ड प्राप्त मुराउ मचुसा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजू र रूप द अरौ पिलग्रिम महिंग अहु म चोपाए राय माइर मुराउ मिनिस्टर वार साउदी अरेबिया म रंधु दंगो रूप द ईटानगर नंग मने सिविल सेक्रेटरी नंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र अन्य स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिस बिल्डिंग पर खेप तफांग तंग रुक द पर ओकेजन नंग एमएलए तेची कसो नाकाप नालो नई रोडे बुई मन अतोंग तंग रुक द सोशल मीडिया पोस्ट कुतनंग पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज र स्टेट नंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस नई इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर सहेंग ची परम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नंग एडवांस कंट्रोल रूम कम्युनिकेशन सिस्टम कॉन्फ्रेंस हॉल इमरजेंसी ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताम पर अतोंग यांग ची ओराउ चीफ मिनिस्टर खांडू र रूक द वेस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट नंग लिरोमोबा वंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस म मनाई Liromoba MLA Pesi Jalan ra official vehicle gari flag up kuri tengo ru tu.
Paro occasion nang MLA Ramaso Fanrao Ariangpa, remote nei rural area tam nang public services punarima, tathokma, administrative machinery ma, kamrap logistical support pa kurang kuma ariang tairangu fanta, arau vehicle gari flag up kurita parara Liromoba circle vapam nang administrative outreach pa tahulinchingu fanta. Machupangwang sira nei class answer paper ma re-evaluation nei verification ma CBSE designated post result activities portal pa machupang junjaling rangsi tarik maso fangching urau manei Central Board of Secondary Education CBSE ra rukhep ta ara upar kamung pa ligwanra CBSE tele helpline number nei email ma tagrakchi ngoru ta 200 years of Hindi journalism, Indian knowledge system, vernacular media, and cultural renaissance kamung nang national e-conference pa Manisa maso tafang ta parju mungo pamwang academician nai media professional heng tong thok tungo ru ta

दोस्तों, अगर निभाने की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां अभी आप सुन रहे थे तांसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपके अपने RJ दाग में नानांश के साथ, और अब आपके इस सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे बुजुर्गों के हंसने के फायदे के बारे में। दोस्तों, यह कोई रहस्य नहीं कि हंसी से मन को शांति मिलती है। यह हमें लोगों से जुड़ने और तनाव मुक्त महसूस करने में मदद करती है, लेकिन शायद आपको यह एहसास ना हो कि हंसी का जादू सतह के नीचे भी चलता है, जो आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शोध से हमें पता चलता है कि हंसी और विनोद आम तौर पर बूढ़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। हमने हंसी के पीछे के विज्ञान का गहराई से अध्ययन किया ताकि यह समझ आ सके कि बढ़ती उम्र में हंसी आपके स्वास्थ्य को कैसे फायदा पहुंचा सकती है। दोस्तों, समय के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ इसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है, जिससे वायरस से लड़ना और संक्रमण से ठीक होना मुश्किल हो जाता है। हंसने से आपके शरीर की रक्षा करने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हंसने से आपके रक्त में प्रतिरक्षा कोशिकाओं और एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ता है, जिससे आप रोगाणुओं और संक्रमणों के प्रति अधिक सशक्त प्रतिक्रिया दे पाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पे, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जहां हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए हंसने के फायदे के बारे में। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ तनाव के स्तर को कम रखना बेहद जरूरी होता है। लगातार तनाव बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इसके अलावा इससे होने वाली सूजन, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती है। हंसने से कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। सिर्फ एक बार हंसने से भी कोर्टिसोल का स्तर 37% तक कम हो जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक हंसते हैं या हंसने का कारण क्या है। दोस्तों, किसी बात पर हंसी आने से शारीरिक तनाव भी कम हो सकता है। हंसने से मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और यह अनुभूति 45 मिनट तक बनी रह सकती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग हमेशा किसी भी तरह से हंसते हैं, उनमें हृदय रोग या स्ट्रोक होने की संभावना कम होती है। हर बार हंसने पर आपकी हृदय गति और सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप आपका हृदय अधिक मजबूत और तेज गति से धड़कता है, जिससे पूरे शरीर में अधिक ऑक्सीजन

ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। बेहतर रक्त संचार से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। हंसी आपके हृदय स्वास्थ्य को कई तरीके से भी प्रभावित करती है, जैसे रक्तचाप को कम करती है, तनाव हार्मोन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं और हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। हंसने से ये हार्मोन कम होते हैं और यह दबाव दूर होता है। वहीं स्वस्थ शरीर के वजन को बढ़ावा देना, केवल 10 से 15 मिनट तक हंसने से 40 कैलोरी तक बर्न हो जाती है।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज और नुक्ते श्रोताओं का समाचार। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभिंगोरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार पहुंचे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सैन्य सेवाओं से विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 31 मई 2026 रविवार को सुबह 11 बजे करेंगे। शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने लोअर दिबांग वैली जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सियांग जोनल फेज 2 2026 में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। बैडमिंटन में सिंगापुर अपने सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की मिक्स्ड डबल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिसा क्रास्टो का मुकाबला जापान की सायका होबारा और युइची शिमोगामी से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम

प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। सुश्री शर्मा ने कहा कि भारत कच्चे तेल की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी काम जारी है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। संयुक्त सचिव ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी कि कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित हो रही है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस, केरोस, हरमुज, जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले या स्वदेशी ध्वज वाले व्यापारिक पोतों पर भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई भी घटना नहीं हुई है। म्यांमार के राष्ट्रपति मीन आंग हलाउंग आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। उन्होंने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोध मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बकराऊ स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में मत्था टेका और बोधगया स्थित बर्मी मठ का भी दौरा किया। इसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। इसके सब बाद राष्ट्रपति मीन आंग हलाइंग आज नई दिल्ली पहुंचे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति मीन सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति मीन व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली।

शानदार सैन्य करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का संबोधन 31 मई 2000 जनरल एन एस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का संबोधन 31 मई 2026 रविवार को सुबह 11 बजे करेंगे। यह इस लोकप्रिय कार्यक्रम की अगली कड़ी होंगी, जिसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने लोअर दिबांग वैली जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सियांग जोनल फेज 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और जनसेवा के प्रति समर्पित होकर काम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि भारतीय हज मिशन को पहली बार सऊदी हज और उमरा मंत्रालय द्वारा हज समन्वय और संचार में उत्कृष्टता के लिए दो

0: प्रतिष्ठित लब्बे तुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि हज का सफल आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय हज समिति और सऊदी अरब में भारत के राजदूत तथा जेद्दा में महावाणिज्य दूत के नेतृत्व में भारतीय हज मिशन के बीच सहज समन्वय को दर्शाता है। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। गया में 3, औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि सारण और खगड़िया जिलों में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1 करोड़ शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बिरला ने कहा कि तीव्र तकनीकी प्रगति के इस दौर में भी हिंदी की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी अब केवल समाचार पत्र और टेलीविजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों के माध्यम से लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी में समाचारों, विचारों और विश्लेषण की बढ़ती स्वीकार्यता इस भाषा की शक्ति और व्यापक पहुंच दर्शाती है। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाए रखा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said the Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of 158 corps at National Defence Academy in Kharagwalsa, Pune, General Dwivedi said Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emergency security challenges. General Dwivedi said Operation Sindoor reflected the nation's resolve and underscored the importance of synergy among the armed forces. President of Myanmar, Min Aung Hlaing, arrived today at Gaya in Bihar on a 5-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in both Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. He also meditated under Revered Bodhi Tree, where Lord Buddha is believed to have attained enlightenment. During his visit, the Myanmar president paid obeisance at historic Sujata Temple in Bakrar and visited Burmese Monastery in Bodh Gaya. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the War Memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with a Tri-Services Guard of Honour. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar today said elections in India are conducted strictly in accordance with the Constitution, electoral laws and the transparent guidelines issued by the Election Commission. Addressing the second National Conference of Councils representing the Election Commission at the India International Institute of Democracy and Election Management in New Delhi, Mr. Kumar highlighted that around 1.8 crore personnel are deployed during Lok Sabha elections to ensure transparency, accountability

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और आप सुन रहे हैं शाम की महफिल। दोस्तों, कभी कभी दिल की बातें शब्दों में नहीं एहसासों में बयां होती है। कभी कोई ख्वाब हमें पुकारता है तो कभी मन खुद अपनी मंजिल तलाशने निकल जाता है। आज का ये अगला गीत भी कुछ ऐसे ही जज्बातों को आवाज देता है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनते हुए सफर तय करने का नाम है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रोन FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों शाम का रंग जब थोड़ा मस्ती भरा हो, दिल जब डांस फ्लोर पर थिरकने को तैयार हो और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए, तो समझ जाइए कि अब वक्त है एक ऐसे गाने का जिसने कॉलेज लाइफ, दोस्ती और युवाओं की ऊर्जा को एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द एयर का यह सुपरहिट ट्रैक अपने रिलीज के बाद से हर पार्टी, हर फेस्ट और हर डांस परफॉर्मेंस की जान बन गया। इसे आवाज दी है श्रेया घोषाल, उदित नारायण, विशाल डाडलानी और शेखर रव जयानी ने, जबकि संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: दुनिया का बॉस। लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है। अब क्या करें? जो भी करेंगे एक साथ करेंगे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: What is he doing? God.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें।
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम आदि श्रोताओं का समाचार।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सिंगर किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को हुआ था। वहीं उनका निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। किशोर कुमार के स्वभाव में फक्कड़पन कूट कूट कर भरा हुआ था। वह बेखौफ थे, उन्हें जिंदगी की जरा सी भी चिंता नहीं थी। मूड सही हो तो पल भर में गीत रिकॉर्ड करते हैं, और मूड नहीं तो चाहे कितने भी पैसे दे दो गीत नहीं गाएंगे। ऐसे अलबेले किशोर कुमार के जीवन के कई किस्से हैं। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि घर में घुसने से पहले ही उनको पोर देखना चाहिए था। मसला यह है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बिवियर ऑफ किशोर का साइन बोर्ड लगा रखा था। निर्माता निर्देशक HS रवैल जब उनसे उनके घर में मिलने कर बाहर जा रहे थे तो किशोर ने उनका हाथ काट लिया था। जब रवैल ने पूछा तो किशोर ने जवाब दिया कि मेरे घर में घुसने से पहले आपको साइन बोर्ड देखना चाहिए।

दोस्तों, एक बार का बात है कि किशोर कुमार ने 1962 में एक कोशिश की और वह भी सफल हुए। फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधा लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। यह गीत एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था तथा सुपरहिट भी हुआ। लता मंगेशकर इसमें किन्हीं कारणों से आवाज नहीं दे पाई थी, तब किशोर ने यह कोशिश की और वह भी वो सफल हुए। वहीं 1976 में राजेश खन्ना की महबूबा फिल्म का सुपरहिट गाना मेरे नैना सावन भादो को किशोर कुमार ने गाया था। पहले मोहम्मद रफी यह गीत गाने वाले थे, लेकिन राजेश खन्ना के कहने के बाद यह गाना किशोर से गवाया गया।

0: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी, अभी आप सुन रहे थे आज के कलाकार। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम निशी श्रोताओं का समाचार।
1: मलिंगम अल्प वॉल्यूम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ सोगला मेडियम वेव 444.4 मीटर गला 675 किलो हर्ज उड़े सोगे निशियागम का मोदम निराब दुकुन तन बमुलिंगम हुमरिदन अतुचोब नुले तपातन निशि पुयम होको के तपातन सीम गव तंगा मालबो निशि बेमिनम सेत पोलिक सोलगे लोली चुमुम आलगे पोयु आलग ओयुम ग कन मोदक निशि पुयम नुले दन तबायम ग आगम होगे तपातन सीम ग निशि पुसी म्यांमार न्योकुक प्रेसिडेंट तूप व्यू मिन ओंग हलाइंग इंडिया गदग बोध गाया हो आले लोंग गब गाले काताब हज गम गम मुआम बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर तूप विजय कुमार सिन्हा गाया एयरपोर्ट हो द रेल बुआजिक नम हल होगा म्यांमार के प्रेसिडेंट ला गदग सो यूनम हुमकुम नम महाबोधि टेम्पल हम ला कोलग सुजाता टेम्पल हो हाल काले हुम लिल इजगन कुबाहल होग लग लगा मुआ आले लोंग उरु सो बोध गाया आलो हित गो म्यांमार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दो दिन हम कम गाल कली तैकुन हल पुए वेपा मोल आल गुजरात के भुज आलोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थुलुंगम यूनियन होम मिनिस्टर तूप अमित शाह कर बन बुलग अस हाला हुम देह चंपुई ताल बुलम अचा बोन येले दो दो दो हल पलिजिल अयुग बॉर्डर सिक्योरिटी उरुलो टेरिटोरियल सिक्योरिटी ग मज दोक व मेग मदर मपल नितब क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड ब मुजतेकुन हल दगो गो ओलिंजिग नुकबा होग लगा सोग बोनसिम स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट उड़लो न्योक ग चेतुर दोतुर गल अतुर जाब ग दाग अरम काल दोम दब हनम नितु क हल बेल हो गब सम दानी मुलिंग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस तुलुंग आर्म फोर्सेस तुलुंग होग BSF ग नी मुलिंग अल जाब काल दो ज्ञात का हल का मिनिस्ट्री होग पुई गो दगो ओलिंजिक नुक वहल पुए विपादो मोल तिरप डिस्ट्रिक्ट खोंसा आलो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस तुलुग अनी चामगदुकु हन गोल्डन जुबली ग सोदम सोनिया गन को बहल होग सो ग सोद अमीन गब हन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तुप चौना मेन स्टेट सो अर्थ अलिल अका ममद भन रेस्टोरेंट बस रोड सेफ्टी अवेयरनेस बस होग लग्जरी बस हिदम अरब ममदको मकोजिक नुक बहल होग लगा स्टेट सो ट्रांसपोर्ट सर्विसेस के मिनिस्टर तुप ओजिंग तासिंग होग होम एंड ट्रांसपोर्ट ग एडवाइजर दन चाकात आबो बुनियकम मैराथन लोका मीन्स गल पर्व गम रन फॉर रोड सेफ्टी हेल्प बोन निगनाम लियोर गमदको मकोकोज गन गुबा हेल्प ये विपादो सोलो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर तूप किरण रिजिजू विपागुम इंडियन हज मिशनरी नात नाले ग सऊदी मिनिस्ट्री ताचे होग हिनम आके अन्य लवेतुम अवार्ड्स हम हज कोऑर्डिनेशन ला कम्युनिकेशन नम हज ला उमरा हो अल जाब बोन निग अग गमगुब आके केज कुनम हल होग अब मिनिस्टर कम सऊदी अरबिया न्यो कम गदा अहोग हजिब गोगा काल हान्या बोम अल जाब चुम्पाम द बोन ला बोन मोद जिज गमगुब पायालिंचो हल पर रिजिग नुकवा हल पुए विपादो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लिरोमोबा हो मोल आल लिरोमोबा के MLA तुप पेसी जिलेन डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सम का पा हुमाब मोदब निब्या जाब उच गिच गेल रोलुंगम सका बोन निग अग मम दब हन ऑफिशियल गाड़ी तोरग जिलेन जिनाम मम बोन निरब गम दुकुब हरब मम दुकुब मको जिग नुक बहल होग सो गाड़ी जिनाम सी ऐ गो अल जापा हल डॉक्टर जुमी रोमिन कम पहली हुमले जिग नुक बहल पुए विपादो तन बहुदे नुला आकाशवाणी ईटानगर सोग नसीपुयम दंता व्यायाम होगा तादुदन मोल

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Tape Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप का।

0: 0.51 kilometer per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणाचल न्यूज रेल। ये आकाशवाणी ईटानगर का RUN FM फन स्रोत 3.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।
3: हेलो एवरीवन, दिस इज कंसन योर होस्ट फॉर टुडे एंड वेलकम बैक टू वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर। टुडेज सेशन एक्सप्लोर्स अ मोर डेलिकेट साइड ऑफ इमोशन। इट्स अबाउट लव, लॉस एंड लॉन्गिंग। दीज आर द सॉन्ग्स दैट स्पीक्स ऑफ रिलेशनशिप इन ऑल देयर कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स अबाउट मोमेंट्स ऑफ जॉय, सेपरेशन, रिफ्लेक्शन एंड हीलिंग। So let's start today's session with a song that feels warm and grounded. It speaks of closeness and affection in a small, in a simple, heartfelt way. Here's Your Man by Josh Turner. Please enjoy.

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज फिर हम लेकर आए हैं यादों की उस खूबसूरत पोटली को, जिसमें छुपे हैं कुछ अनमोल नगमे, कुछ सुनहरे पल और कुछ ऐसी धुनें जो वक्त की धूल में कहीं दब तो गई, लेकिन दिलों से कभी दूर नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भूले बिसरे गीत की, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम करेंगे संगीत के उस सुनहरे दौर की सैर, जहां शब्दों में सादगी थी, सुरों में जादू था और दिल सीधे दिल तक पहुंचती थी।

दोस्तों, वक्त है एक ऐसे गीत का जो अपने साथ लेकर आता है खुशी, उत्साह और मिलन की मधुर बातें। यह गीत है फिल्म राम और श्याम का, जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर निभाया था वहीदा रहमान ने। संगीत दिया था नौशाद ने और अपनी मधुर आवाज से इसे सजाया था लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं, आज सखी रे मोरे पिया घर आए रे, प्रीतम के घर आने की खुशी, मन की उमंग और सखियों के बीच बांटी जा रही आनंद की खुशियां को इस गीत में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। यही वजह है कि सालों बाद भी यह गीत अपनी ताजगी और मिठास बनाए हुए है। तो आइए सुनते हैं यह सुरीला और सदाबहार नगमा और मासूम महसूस करते हैं मिलन की उस अनमोल खुशी को।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, पुरानी फिल्मी नगमों की बात ही कुछ और होती है। उनके अल्फाज में अदब होता है और उनके धुनों में कशिश होती है और अदायगी में एक खास नफासत। अब हम आपको ले चलते हैं साल 1967 के सुपरहिट फिल्म राम और श्याम की तरफ, जहां पर्दे पर अपनी दिलकश अदाओं में समा बांधा था दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज ने। महफिल का रंग जमाने वाला यह नगमा है, मैं हूं साकी तू है शराबी। लफ्ज़े शायर नाजुक ख्याल शकील बदायूनी के और धुन को सजाया है संगीत के बादशाह नौशाद ने। वहीं अपनी पुरकशिश आवाजों का जादू बिखेरा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। तो जिंदगी की भाग दौड़ से कुछ लम्हे चुराएं और सुनते हैं ये प्यारा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कभी कभी फिल्में नगमे सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि उम्मीद, हौसले और खुशी का पैगाम भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म है वही राम और श्याम का। यह गीत उस जज्बे की तर्जुमानी करता है जब गम के बादल छटते हैं और मुश्किलों का अंधेरा दूर होता है और जिंदगी में बहारों की आमद होती है। गीत है आई है बहारें मिटे जुल्मों से तम। इस नगमे के अल्फाज दुनिया की रोशनी से जगमगाते हैं। शायर शकील बदायूनी के लिखे हुए बोल और नौशाद की दिलनवाज धुन इसे एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देती है और जब इसे अपनी पुर असर आवाज में पेश करते हैं मोहम्मद रफी, तो गीत सीधे दिल में उतर जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के रून FM 103.1 MHz पे। चाहती है दिल से ये दिल की बात। दोस्तों, मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो उसके एहसास को लफ्ज़ों में बयां करना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे फिल्मी नगमों में हमेशा इन जज्बात को बड़ी खूबसूरती से सुरों में ढाला जाता है। अब पेश है फिल्म राम और श्याम का एक बेहद दिलकश और रोमानी नगमा, ओ बलम तेरे प्यार की ठंडी आग में। इस गीत में मोहब्बत की नरमी भी है, तड़प भी, और दिल के उन खामोश एहसासात की खुशबू भी, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायर शकील बदायूनी के खूबसूरत अल्फाज हैं, नौशाद की धुन और मोहम्मद रफी आशा भोसले की सुरीली आवाज इस नगमे को यादगार बना देती हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल की गहराइयों में महसूस किए जाते हैं। और आज का ये गीत भी कुछ ऐसा ही है, इश्क एहसास और दिल की बेकरारी का एक खूबसूरत इजहार। पेशे खिदमत है फिल्म राम और श्याम का एक दिलकश और यादगार नगमा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो सीधे दिल को छू जाती है। इसे अपनी पुरअसर आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी ने।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे, और महात्मा

0: गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य है वो वही रहता है। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला।

0: रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं, बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं, बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वकी स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए।

0: जी आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1000-2000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। सौरभ आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पज तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ही इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कंटेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10 हजार फॉलोअर्स थे, वो 10 हजार भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोज देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
0: श्वेता एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जब फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
0: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है।
1: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोफर गामिनी।
1: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है, हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखे। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
1: मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने

0: सारे गॉड्स है, गॉडेसेस है. हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा. तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं.
1: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 का चैलेंज किया था, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो.
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया. और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है.
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है.
3: हाँ, एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है. अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है. तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड,
0: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो.
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है.
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स. हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है. वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए. लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती. कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो. और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की. आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है, और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं. स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में.
5: जी धन्यवाद.
4: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
4: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
5: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
4: जी
5: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
4: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
5: जी,
4: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? अगर इग्नू की बात करें,
5: जी,
4: तो
5: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वान हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल सेमीफाइनल में हार गई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहे एक ट्रक के राजमार्ग पर पलट जाने से 22 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार बताया है। श्री हेक्सेथ ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा औद्योगिक क्षमताओं की भी खुलकर प्रशंसा की। रक्षा सचिव ने भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की भी सराहना की और उन्नत सैन्य अभियानों में सहयोग करने की उसकी बढ़ती क्षमता का उल्लेख किया। श्री हेक्सेथ ने कहा कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक औद्योगिक और रसद अवसंरचना विकसित कर रहा है, जिसमें साझा रक्षा प्लेटफार्मों की मरम्मत और रखरखाव करने और क्षेत्र में कार्यरत अमरीका की नौसेना के जहाजों का सहयोग करने की क्षमता शामिल है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि भारत और अमेरिका सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उत्पादन पहलों पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने आज यूके यूएस सुरक्षा समझौते के तहत सैन्य क्षमता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र के भीतर केबल की सुरक्षा के लिए पानी के नीचे ड्रोन तकनीक विकसित और तैनात करने की एक संयुक्त भागीदारी की घोषणा की। इन नेताओं ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अंडर सी व्हीकल तकनीक के अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीले ने कहा कि ब्रिटेन इस परियोजना में 20 करोड़ 10 लाख डॉलर का योगदान देगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वर्तमान पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन आउं लाइन से मुलाकात की है। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री ऊ मिन आउं लाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। श्री ऊ मिन आउं लाइन मंगलवार को व्यापारिक तथा औद्योगिक वार्ता और स्थल भ्रमण के लिए मुंबई जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने वाले एक संभावित समझौते की उम्मीदों के चलते ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। एक रिपोर्ट।
2: इस महीने अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक में लगभग 19% की कमी आई है, जो मार्च 2020 के बाद से इसका सबसे बड़ा मासिक नुकसान है। तब कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई थी। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमतों में इस महीने लगभग 17% की गिरावट आई, जो अप्रैल 2025 के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति समझौते पर अंतिम निर्णय लेने के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक करने की घोषणा के बाद कीमतों में गिरावट आई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.73% गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट 1.77% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर स्थिर हुआ। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद मजबूत बना रहा है। वित्त मंत्रालय की मई 2026 में मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार सुविधाजनक स्थिति में है। मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक परिवेश, कच्चे तेल के दाम बढ़ने, वित्तीय स्थिति सख्त होने और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर कमजोर पड़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। अफगानिस्तान के लगमान प्रांत में आज एक हाईवे पर पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। मृतकों में 10 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रांत के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक अमीन उल्ला शरीफ ने बताया कि चालक के कथित तौर पर सो जाने के कारण ट्रक खाई में गिर गया। ये यात्री उन हजारों अफगानों में शामिल थे जो 2023 में इस्लामाबाद द्वारा अवैध प्रवासियों पर शुरू की गई कार्रवाई के बाद हाल ही में पाकिस्तान से लौटे थे। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लवैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेयोंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रॉस्टो मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में हार गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहे एक ट्रक के राजमार्ग पर पलट जाने से 22 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग। This is Akashvani. I am Sahira Mujtaba with World News. The headlines. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a key pillar of regional stability, highlights growing strategic partnership between Washington and New Delhi. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrives in New Delhi on a five-day visit to India. In Afghanistan, 22 people were killed after a truck carrying Afghan refugees overturned on highway. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And now the news in detail. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth has described India as a key pillar of regional stability, highlighting its military modernization efforts and growing strategic partnership with the U.S. in maintaining a balance of power across the Indo-Pacific. Speaking on the second day of the Shangri-La dialogue in Singapore, Mr. Hegseth praised India's expanding role in the Indian Ocean region and its efforts to strengthen its defense capabilities.
5: In South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. We've also committed to pursuing co-production with India to advanced capabilities like Javelin anti-tank guided munitions.
4: Mr. Hegseth also lauded India's defense manufacturing sector, noting its growing capacity to support advanced military operations. He said India is developing the industrial and logistics infrastructure needed to sustain high-end military capabilities, including the ability to repair and maintain shared defense platforms and support U.S. Navy vessels operating in the region. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi this evening on a five-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier today, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at the Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of the President to India in his current capacity. This evening, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Mr. Hlaing. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. He said that he is looking forward to meeting of Mr. Hlaing with Prime Minister Modi to advance the partnership for peace, progress and prosperity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi on Monday on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. He will also participate in a business forum. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh interacted with Singapore President Tharman Shanmugaratnam at the Astana reception hosted on the sidelines of the Shangri-La Dialogue 2026 in Singapore. In a social media post, the Ministry of Defense said that the discussions were focused on further strengthening bilateral strategic ties and advancing cooperation in areas of mutual interest. Chief of Defense Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honor at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying a wreath at the War Memorial, General Chauhan said it was a matter of great honor for him to superannuate with a Tri-Services Guard of Honor. Marking his transition to civilian life after over four decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent.
6: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
4: This is Akashvani. You're listening to World News. We bring you... Welcome back. In Afghanistan, 22 people were killed and 35 others injured after a truck carrying Afghan refugees returning from Pakistan overturned on a highway in Laghman province today. Officials said the victims included 10 children and 5 women. The provincial director of public health, Aminullah Sharif, said the truck veered off the road and fell into a ditch after the driver reportedly fell asleep. The passengers were among thousands of Afghans who have recently returned from Pakistan following Islamabad's crackdown on undocumented migrants launched in 2023. Since then, many Afghans have been deported or compelled to leave the country amid increasing pressure from Pakistan. Russian officials have said that overnight Ukrainian drone strikes sparked fires at several oil facilities in Russia. Officials in Russia's Rostov region said that falling drone debris caused a fire, damaging an oil depot and a tanker at the port city of Taganrog. In the neighboring Krasnodar region, authorities reported that debris from another drone attack ignited a fire at an oil depot in Armavir. Referring to the attack in Krasnodar region, Ukrainian President Volodymyr Zelensky in a social media post noted that the city is located approximately 500 kilometers from Ukraine's border, adding that they are rightfully bringing the war back to where it came from. Russia has recalled its ambassador to Armenia, Sergei Kopyrykin, to Moscow for consultations amid growing concerns over Yerevan's efforts to strengthen ties with the EU ahead of the June 7 elections. In a statement released today, Russia's foreign ministry said that Ambassador Kopyrykin had been recalled in connection with steps taken by the Armenian leadership towards rapprochement with the European Union. Although Armenia remains a formal ally of Russia, it has deepening ties with the Western countries in recent years, despite its economic dependence on Moscow. The move comes a day after a Russian-led economic union of former Soviet republics said that it would consider suspending Armenia for seeking EU membership and called on Yerevan to hold a referendum. India's Hajj mission won two prestigious awards at this year's Khitam-e-Mahu Misk ceremony in Saudi Arabia, marking a historic first for the country. The Labbaythum Awards, given annually by the Saudi Hajj Ministry to recognize excellence in pilgrim services, were presented to the Indian Hajj mission under the Best Hajj Coordination and Communication category. The ceremony marks the formal conclusion of the Hajj season. Consul General Fahad Suri and Consul Hajj Sadaf Chaudhary represented India at the event, which celebrated outstanding performance by Hajj missions from across the world. In a statement, the Indian Hajj mission said, "The recognition reflects the collective dedication, teamwork and commitment of everyone involved in the Hajj operations." Defence ministers from the US, Britain and Australia announced today a joint partnership to develop and deploy advanced underwater drone technology aimed at protecting undersea cables, strengthening maritime security and boosting military capabilities under the AUKUS Security Pact. These leaders said at the Shangri-La Dialogue Security Summit in Singapore that uncrewed undersea vehicle or UUV technology, expected to be ready by next year, will be equipped with sensors, weapons systems and other advanced capabilities to protect seabed infrastructure, conduct surveillance and reconnaissance and support military operations. In badminton, Indian men's double pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament today. The Indian pair defeated world number one South Korea's duo Seo Sang-shae and Kim Won-ho in the semi-final match. In another men's double semi-final match, Indonesian pair of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian will face the Chinese duo of Liang Wei-king and Wang Chang. The winner of this match will face the Indian duo of Sattvic Sairaj and Chirag in the final. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a key pillar of regional stability, highlights growing strategic partnership between Washington and New Delhi. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrives in New Delhi on a 5-day visit to India. In Afghanistan, 22 people are killed after a truck carrying Afghan refugees overturns on highway. And in badminton, Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. That concludes tonight's World News. For more updates, stay tuned to Akashvani. Good night.